हाय, मैं हूँ आरजे सुदेव और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगा, अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। ईद मुबारक।

एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश। और इस ईद पर भले ही आप अपने घर से दूर हैं, लेकिन आपकी फैमिली से नहीं, क्योंकि रेडियो ऑलिव है ना, तो बस रेडियो ऑलिव की फैमिली

0: Learning Center wishes you Eid Mubarak.
1: दिल भारी है और घर की याद भी आ रही है. एक और ईद बीत जाएगी अपनों से गले लगे बिना. कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सपनों की तैयारी जारी है. रेडियो ऑलिव की तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक.

जैसे बिरयानी बांटे बिना खाई नहीं जाती, वैसे ही ईद की खुशियाँ बांटे बिना मनाई नहीं जाती। आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से

एवरीवन, मैं हूँ आपकी कशिश। और इस ईद पर भले ही आप अपने घर से दूर हैं, लेकिन आपकी फैमिली से नहीं, क्योंकि रेडियो ऑलिव है ना, सो बस रेडियो ऑलिव की फैमिली

Unimoney Exchange wishes you Eid Mubarak. खूब बिरयानी खाइए, खूब खुशियाँ बांटिए, मेरी तरफ से यानी कि सिमरन की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।

हाय, मैं हूँ आजय सुदेव और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगा, अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना।

0: Go Crispy wishes you Eid Mubarak.
1: दिल भारी है और घर की याद भी आ रही है. एक और ईद बीत जाएगी अपनों से गले लगे बिना. कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सपनों की तैयारी जारी है. रेडियो ऑलिव की तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक हो.

और घर की याद भी आ रही है। एक और ईद बीत जाएगी अपनों से गले लगे बिना। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सपनों की तैयारी जारी है। रेडियो ऑलिव की तरफ से उन्हें भी ईद मुबारक हो जो घर से दूर है।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

हाय, मैं हूँ आरजे सुदेव और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आज फिर से याद दिलाऊंगा, अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना।

0: Better Sport wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi, this is Air Rahman.
6: Air Rahman.
7: Eid Mubarak to my brothers and sisters around the world.
5: Radio Olive. Jio Bindas. Jio Bindas.
8: Radio Olive. Eid Majlis. Eid Majlis.
9: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टाकुलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में, योर Ultimate Eid Destination. Absolute Barbecue wishes you Eid Mubarak.
4: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
5: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: कतर ऑटोमोबाइल कंपनी विशेस यू ईद मुबारक.
5: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
5: मोटोरोला विशेस यू ईद मुबारक।
6: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
7: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
8: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: ക്രിസ്തുനിയുടെ മുഴുവൻ കേൾവിക്കാർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമുക്കൊക്കെ ശക്തി നൽകാൻ, ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സർവശക്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
1: Happiness free mein bat rahi hai, jitni chaho utni batwar lo, kyunki happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio bindaas.
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टैक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid Destination.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
6: ईद मुबारक.
7: ईद मुबारक.
6: रफीक चाचा, ईद मुबारक.
8: आप
6: चाचा? मैं इब्राहिम.
9: हर जुम्मे रात आता हूँ तुम्हारी बिरयानी खाने को.
8: अरे मियां, रफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
10: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
6: हेलो हेलो, तौफिक चचा की बिरयानी में
9: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
6: क्यों चचा?
11: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
0: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM.

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: अल अब्दुल गानी मोटर्स विशेस यू ईद मुबारक।
6: रेडियो ओलिव ईद मजलिस।

0: İyiyiz maçlıyız.
1: Alp Somigoyk Super Duper Good Morning. और बहुत ही बढ़िया ईद मुबारक। देखिए आज बहुत ही बढ़िया दिन है, ईद का दिन है, जश्न का दिन है, तो हम सब जो है जश्न मना रहे हैं। उसके साथ साथ एक खास बात यह है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। तो जानी इंतजार किस बात का है, अपने ईद विशेष भेजिए, मॉर्निंग विशेष भेजिए 3311063 पर। बताइए आज के दिन क्या क्या प्लान कर रखा है और ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। अब एक फैमिली फोटो, अपने ईद के दिन की फैमिली फोटो खींच के जरा मुझे जल्दी से भेज दीजिए 3311063 पर, देखता हूं मैं कैसा लग रहा है। आपके साथ ईद मनाने का एक मौका भी मिला है मुझे, तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी जो है एक फोटो भेज दीजिए, मैसेज भेज दीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है आपके और आज के इंटेंशन क्या क्या है बाबू। और यहाँ पे बहुत सारी बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, इवेंट्स के बारे में भी बताएंगे, मगर फिलहाल गाने सुनते हुए जरा किक स्टार्ट करते हैं आज के शो को। आप सभी को एक और बार फिर से ईद मुबारक बोलते हुए हम किक स्टार्ट करते हैं आज के ईद मजलिस को। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: हर साल टीथ विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it. ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टाकुलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर अल्टीमेट ईद डेस्टिनेशन।
4: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक।
5: ईद मुबारक।
4: तौफिक चाचा, ईद मुबारक।
6: आप
4: चाचा? मैं इब्राहिम।
5: हर जुम्मे रात आता हूँ
4: तुम्हारी बिरयानी खाने को।
6: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
8: हेलो हेलो, तौफिक चचा की बिरयानी में
9: शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ।
8: क्यों चचा?
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम ग्लाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Radma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Radma Wholesale Market at Selva Road
3: and Grand Mall Hypermarket
4: supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझीकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।

0: maçlıyız. İyi maçlıyız.
1: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. स्टेशन क्लॉक में अभी 8:21 हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं. मुझे मैसेज भेजा है यास्मीन इब्राहिम ने. उन्होंने भेजा है कि हाय सुदेव, ईद अल अदा मुबारक. और उन्होंने अपने फैमिली का फोटो भी भेजा मुझे. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. उसके साथ साथ एक एग पुडिंग का फोटो भी भेजा और लिखा है कि दिस इज ओरिजिनली फ्रॉम श्रीलंका बट मेरे ससुराल में ईद की शुरुआत इस मीठे से होती है. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, आपने ये चीज मेरे साथ शेयर किया. उसके साथ साथ मेहरुनिसा जी का मैसेज आया है. उन्होंने बोला है ईद मुबारक सुदेव. और मुझे उसके साथ साथ और भी मैसेजेस आए हैं जहाँ पे मोहम्मद फरीद भाई ने मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है ईद अल अदा मुबारक, थैंक यू जी, आपको भी ईद मुबारक. और अमजद भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी ईद मुबारक बोला है. ईद मुबारक भाई. इदरीस भाई का मैसेज आया है, बहुत दिनों बाद मैसेज आया है और यहाँ पे उन्होंने फोटोज भेजे हैं. लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक. और उसके साथ साथ लिखा है कि आई एम इन पाकिस्तान, आई एम मिसिंग ऑलिव एंड यू ऑल्सो, दैट्स वाई आई डिडंट सेंड एनी पिक्चर इन द मॉर्निंग. वही मैं सोच रहा था यार, दो दिन से इदरीस भाई की फोटोज नहीं आ रहे, कहाँ गए, क्या हो गया, ठीक तो है ना सब करके. बट उन्होंने अपने होम टाउन से जो है कुछ फोटोज हमें यहाँ भेजे हैं. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच इदरीस भाई, आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग और ईद मुबारक. उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है शेख अब्दुल्ला भाई का. उन्होंने लिखा है ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक भाई. मोहम्मद आमिर भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी ईद अल अदा मुबारक भेजा है. थैंक यू सो मच जी, आपको भी ईद मुबारक. नाजनी जी का एक मैसेज आया था, बहुत सुबह आया था, जो मैंने अभी खोला है. लिखा है कि फिल योर माइंड विद सीड्स ऑफ ग्रेटनेस, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु वांट टू सी यू प्रॉस्पर, एक्ट लाइक यू आर अ विनर एंड आर विनिंग योर वे टू विक्ट्री, दैट इज द वे टू स्टार्ट योर मॉर्निंग, डिफाइंड सक्सेस. ईद मुबारक करके. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ही प्यारा दिन मैं विश करता हूँ और आपको भी ईद मुबारक. ये मैसेज भेजने के लिए थैंक यू सो मच. मैं चाहूंगा यार, अगर हो सके तो एक बार कॉल कीजिए मुझे, बात कीजिए, अपने ईद विशेस मुझे कॉल करके दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा सुन के मुझे भी. तो यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और एक गाना प्ले करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में. तो कॉल करने के लिए नंबर मैं एकदम से भूल गया था एक्साइटमेंट, मैं बता देता हूँ, 4444106. फिर से बता देता हूँ, 4444106. तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए मुझे, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, और अपने ईद विशेस जो है दिए मुझे, वो भी कॉल करके अपनी आवाज में.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
0: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Fast Films wishes you Eid Mubarak.
7: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
8: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
9: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा यार, मेरे पास कॉल आए थे, मैं जैसे ही उठाने जा रहा था वो कट हो गए. और एक कॉल मैंने उठाया था वो बीप बीप बीप करके फिर कट हो गया. एक और कॉल मैंने उठाया था और एकदम से जो है कुछ और ही आवाज आने लग गई. मैं हेलो हेलो बोल रहा था मगर कोई वहां से जवाब नहीं दे रहा था. ऐसे ना करिए यार मेरे साथ, मेरा दिल ना तोड़िए. और उसके साथ साथ बता दूं, कल जो है हम अपने लिसनर्स के साथ गए थे ईद मजलिस सेलिब्रेट करने के लिए कोड़ीकोट स्टार रेस्टोरेंट में, जहां पे छोटे छोटे गेम्स हमने खेले, गिफ्ट्स बांटे और अपने लिसनर्स के साथ बैठ के बिरयानी खाई. और काफ़ी बढ़िया बिरयानी थी, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से जो है उन्होंने फ़न किया. जो जियो बिंदास हमारा टैग लाइन है उसको बिल्कुल परिपूर्ण तरीके से जो है हमने रियलाइज किया वहाँ पे. और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिख जाएगा. स्टोरीज जो है थोड़ी डली थी तो आप चेकआउट कर सकते हैं. उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जानिए इंतजार किस बात का है. सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa, आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो बटन एक बार दबाइए. उसके साथ साथ हमारे पोस्ट चेकआउट कीजिए, हमारे कंटेंट चेकआउट कीजिए, फीडबैक जो है आप हमें बता सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास बात है आप बता सकते हैं. अपने ईद सेलिब्रेशन के स्टोरी को अगर आप डालते हो इंस्टाग्राम में तो आप हमें टैग कर सकते हैं, हम उन स्टोरीज को रीशेयर करेंगे. और यही बात बताते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं. फहीम अब्दुल्ला की आवाज में सुनते हैं चांद मेरा दिल मूवी का गाना. Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: मचलिस।
1: स्टेशन क्लॉक में अभी 8:50 हो रहे हैं, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, इवेंट्स ही इवेंट्स हैं और ईद सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे मौके हैं। आप अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फ्लफी फैंटेशिया शो जो है वो हो रहा है मॉल ऑफ कतर में, ठीक है, और ये 27th से लेके 30th मई तक चलेगा। वैसे स्टेज मॉल ऑफ कतर में 6:30 PM से लेके 8 PM तक ये होगा और एंट्री फ्री है, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफी बढ़िया एक एंचांटिंग ब्लेंड ऑफ एक्रोबैटिक्स, डांस एंड इल्यूशंस जो है आप देख सकते हैं। और यही बात बताते हुए जो है हम भी आगे बढ़ना चाहेंगे और उसके साथ साथ मैं पूछना भी चाहूंगा एक्चुअली कि भाई बताइए, आज ईद सेलिब्रेट करने के लिए आपके प्लान्स क्या क्या हैं, आपने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं, हमें डिटेल में बताइए। मैसेज कर दीजिए 3311063 पर और मैं भी जो कुछ इवेंट्स चल रहे हैं उन सबके बारे में धीरे धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, ताकि इनकेस अगर आपके प्लान नहीं बने तो आप वहां जा सकते हैं, और ऑलरेडी बन चुके हैं तो शेयर कीजिए भाई, बताइए 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल यहाँ पे गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: इस ईद बनाए हर पल यादगार
3: विद रेडियो 106.3 FM। स्टे

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: दानत अल बहार बारबेक्यू विशेस यू ईद मुबारक।
7: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस। ईद मजलिस।
6: एक्सपीरियंस द ट्रू स्पिरिट ऑफ ईद टुगेदरनेस एंड जॉय।

0: का त्योहार प्यार का पैगाम, आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: Majlis.
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे चलिए मौसम के बारे में बात करते हैं। अभी जो है टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस का दिखाया जा रहा है और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 31 डिग्री सेल्सियस और हवा जो है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मुझे और भी कुछ मैसेजेस आए हैं। मुझे एक मैसेज आया था कुंवर पांडे जी का, उन्होंने बोला ईद मुबारक सुदेव, ईद मुबारक जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ एक और मैसेज आया बीइंग ह्यूमन के अकाउंट से, उन्होंने लिखा है ईद अलदा मुबारक करके, थैंक यू सो मच जी, आपको भी ईद मुबारक। और इसके साथ साथ मैंने ये भी पूछा है कि भाई बताइए आपके प्लान्स क्या हैं, तो मुझे एक मैसेज आया है अफसल जी का, उन्होंने मैसेज किया है, उन्होंने बोला कि हेलो सुदेव, एक्चुअली हम जो है आज प्लान कर रहे थे कटारा जाने का और वहाँ पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। सुना है, बिल्कुल सही सुना, उनके बारे में भी जो है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे भाई एक बहुत ही बढ़िया बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर के बारे में, जो मिश्रिफ गैलेरिया में है। और यहाँ पे आप जो है फैमिली फन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर में जाके आप 3 यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है बहुत ही बढ़िया फन जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पे बोलिंग है, गेमिंग है, नर्फ बैटल्स हैं, प्लेडो हैं, और ये हर एजेस के लिए जो है काफ़ी बढ़िया है क्रिएटिविटी के लिए, फन करने के लिए। ग्राउंड कंट्रोल, नर्फ एक्शन एक्सपीरियंस, प्लेडो फन, ये सब चीजें जो है बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 25th से। आपको मिश्रिफ डाउनटाउन आना है, मिश्रिफ गैलेरिया में, जहां पे सुबह 10 बजे से लेके शाम 10 बजे तक वीकडेज में जो है इसका टाइम है, और वीकेंड्स में 10 AM to 12 AM है इनका टाइम। और इसके प्राइसिंग के बारे में आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Jackman की पावर पैक रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
4: दोहा फ्रेम्स विशेस यू ईद मुबारक.
5: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.
6: Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो ईद मजलिस ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई आप सभी को फिर से एक और बार ईद मुबारक। और यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं फायरवर्क्स के बारे में जो कतारा में होने वाले हैं। देखिए 27 से लेके 29 तक कतारा कल्चरल विलेज में 8:30 बजे से लेके जो है फायरवर्क्स होगा। शो टाइमिंग जो है 8:30 से है। और डिस्प्ले ड्यूरेशन के बारे में जब मैंने देखा तो लिखा है कि 10 मिनट्स ऑफ फायरवर्क्स ईच इवनिंग। और ये देखिए बताया गया है डिटेल में कि आपको कतारा कल्चरल विलेज जाना है 8:30 बजे। 10 मिनट के लिए जो है फायरवर्क्स होंगे 27 से लेके 29 तक। फ्री एंट्री है तो बेझिझक अपने फैमिली के साथ अपने लव्ड वंस के साथ आप जा सकते हैं, इन फायरवर्क्स का लुत्फ उठा सकते हैं। और यही बोलते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं, अगला गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: London Bakery wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो और रीडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे ईद अल अदा सेलिब्रेशंस के बारे में जो कतारा कल्चरल विलेज में हो रहे हैं 27 से लेके 29 मई तक, और शाम 4 बजे से 9 बजे तक जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। और यहाँ पे बताया है कि हर एक्टिविटी का जो टाइमिंग है वो वेरी कर सकता है, एंट्री जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इन सेलिब्रेशंस में जो है बच्चे गिफ्ट्स एंजॉय कर सकते हैं, फायरवर्क्स एंजॉय कर सकते हैं, कथरी अर्दा, प्लानिटेरियम शोज एंड मिलिट्री परेड, वो भी इन तीन फेस्टिव डेज में लोग जो है एंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना है कतारा कल्चरल विलेज और कतारा के बीच प्रोमिनेड में जो है ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।
7: टेक मार्ट विशेस यू ईद मुबारक।
8: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
9: मिलन का त्योहार, प्यार का पैगाम। आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक,
10: ईद मुबारक।
11: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है आज अगर अभी कशिश होती यहां पे मेरे साथ तो बहुत खुश हो जाती, बहुत ज्यादा खुश हो जाती, खुशी से झूम उठती, क्योंकि भाई कल का मैच देखा, इतना तगड़ा मैच मानना पड़ेगा। बैंगलोर ने गुजरात का जो हाल किया, जिसने भी मैच देखा है वो समझ सकता है कि क्या ताबड़तोड़ मैच हुआ था, कितना बढ़िया मैच हुआ था, हाई स्कोरिंग मैच था बैंगलोर के लिए। बैंगलोर ने 254 रन्स जो है बनाए, 5 विकेट उनके गिर गए थे, और जब गुजरात की बारी आई उसे चेस करने के लिए तो 162 में ऑल आउट कर दिया। बैंगलोर का एक ईद गिफ्ट था ही अपने फैंस के लिए, क्या बढ़िया खेला यार, मतलब मानना पड़ेगा। अगर हम गेम के डिटेल में जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि रजत पाटीदार जो है उन्होंने 33 बॉल्स में 93 स्कोर किए, विराट कोहली ने 25 बॉल्स में 43 रन स्कोर किए, कृणाल पांड्या ने 28 बॉल्स में 43 रन स्कोर किए, काफी अच्छे रन जो है इनके बल्लेबाजों ने लगाए हैं। वेंकटेश अय्यर स्टार्टिंग में उतना नहीं कर पाए, 7 बॉल्स में उन्होंने 19 रन स्कोर किए, मगर स्ट्राइक रेट उनका 271 का है, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 सिक्स जो है लगाया है। और अगर हम बात करें देवदत्त पडिक्कल की, उन्होंने भी जो है एक स्टेबल इनिंग्स खेला है, 19 बॉल्स में 30 रन स्कोर किया है, बट बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है रजत पाटीदार का, जो कैप्टन है, का बिल्कुल कप्तानी पारी जो है खेली गई है। और यही बात बताते हुए जो है मैं खुशी से ये भी एडमिट करना चाहता हूं कि बैंगलोर फाइनल में पहुंच चुकी है। अब गुजरात के पास मौका है फाइनल में पहुंचने का, कैसे, हैदराबाद और राजस्थान के मैच के बाद उनमें से जो जीतेगा वो फिर गुजरात के साथ खेलेंगे, और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में बैंगलोर के साथ खेलेगा। बैंगलोर ने फाइनल में अपनी जगह जो है सेट कर दी है, अपने ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए बैंगलोर जो है तैयार है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। Say what?

0: Sidra Mall wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
3: Imran bhai, Eid Mubarak!
4: Eid Mubarak!
3: Taufik chacha, Eid Mubarak!
5: Aap?
3: Chacha, main, Ibrahim.
6: Har jumme raat aata hu,
3: tumhari biryani khane ko.
5: Arre miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. बिरयानी भी.
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
8: हेलो हेलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
10: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटे.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हेवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ
8: मैं जैकी श्रॉफ सबको ईद मुबारक और खुशियां हमेशा रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलखोर एंड अल थकीरा म्युनिसिपैलिटी, उन्होंने अनाउंस किया है ईद अल अदा इवेंट के बारे में जो May 28th को होने वाला है अलखोर सिटी सेंटर मार्केट में। इनके सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जो है ये ऐलान आया था और बोला है कि ये फ्री इवेंट है, ये ओपन है विजिटर्स के लिए 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और मिनिस्ट्री जो है ये विजिट कतर और कतर कैलेंडर के साथ कोलैबोरेट करके ये भी अनाउंस किया है कि 2026 ईद अल अदा फैमिली फेस्टिवल हो रहा है 974 बीच में एज पार्ट ऑफ ईद सेलिब्रेशंस इन कतर ऑन May 28th एंड 29th 2026। इसका टाइमिंग भी 4 PM to 8 PM है डेली इन दिनों के बीच में। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: with Radio Olive 106.3 FM.
1: Stay tuned.
2: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
3: यहाँ पे एक और बहुत ही खास बात जो है हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ, वो ये है आज के मैच के बारे में। आज जो है दूसरा क्वालिफायर जो है होने वाला है, और इस क्वालिफायर में अगर हम देखें तो खेलने वाले हैं हैदराबाद और राजस्थान। दोनों टीम टक्कर की टीम है। राजस्थान इस लीग के स्टार्टिंग में अपना टॉप पोजीशन कुछ टाइम के लिए मेंटेन कर पाई, फिर वो नीचे आ गई, उसके बाद लास्ट मोमेंट में वापस टॉप फोर में जो है उन्होंने अपनी जगह बना ली और सेकेंड क्वालिफायर ये खेल रहे हैं। और अगर हम विन प्रोबेबिलिटी देखें तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 53% है हैदराबाद के पास और 47% है राजस्थान के पास। अगर हम टीम के डेप्थ की बात करें तो मेरे हिसाब से हैदराबाद की टीम जो है थोड़ी और बैलेंस्ड है, अच्छा डेप्थ है, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। राजस्थान में बहुत टैलेंट है, कैलिबर है, अगर वो चाहे तो मैच को अपने हाथ में कर सकते हैं। इनमें से जो भी आज जीतेगा वो सीधा मुकाबला करेगा गुजरात से, और उनमें से जो जीतेगा उसका इंतजार कर रहा है फाइनल में बैंगलोर। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Burger King wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: Hi, this is me, Ritik Roshan, wishing all your FM listeners Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
0: Radio Olive, Eid Majlis.

0: का त्योहार प्यार का पैगाम, आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
1: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: मजलिस।
1: तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय करके गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पे कशिश पहुंच जाएगी आपके साथ वक्त बिताने के लिए, ईद मजलिस में एंजॉय करने के लिए। और धीरे धीरे धीरे मैं भी जरा टाटा बाय करता हूँ। जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। आप सभी को एक और बार ईद मुबारक। एंजॉय कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिएगा, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, और अच्छे से इस दिन का जो है आप सेलिब्रेशन एकदम हाई नोट पर रखना। और फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर आप अपने ईद सेलिब्रेशन की स्टोरी इंस्टाग्राम पर डालते हो तो आप हमें टैग कर सकते हैं, रेडियो ऑलिव को टैग कर सकते हैं, हम उनको रीशेयर करेंगे। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Halaman Jim wishes you Eid Mubarak.
8: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
9: Celebrate the joy of community and connection this Eid with Radio Olive 106.3 FM.

0: भाई के बैकग्राउंड में जो है इसी तरीके की आवाज आती है जब वो ईद पे तैयार होके निकलता है।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए ईद मजलिस ले आए हम। एंड सुदेव को टाटा बाय बाय करने के बाद, ईद मुबारक विश करने के बाद, अब बारी आ गई है आप सबको ईद मुबारक कहने की। सो आपको, आपकी फ्रेंड्स को, आपकी फैमिलीज को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड इससे पहले वाली ईद पे जो है मुझे बहुत अकेला अकेला लग रहा था कि यार घर से दूर वाली ईद है, किस तरीके से मनाई जाएगी। लेकिन कतर ने इतना सारा प्यार दिया कि ऐसे ज्यादा मेजर याद नहीं आई। एंड इस वाली ईद के लिए जो है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सो अब मैं एक्साइटेड हूँ, तैयार होकर अपनी चूड़ियां अपने झुमके अपनी जूती पहनकर ऑफिस पहुंच चुकी हूँ आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए और आपकी ईद को और ज्यादा हैपनिंग बनाने के लिए। सो क्या कुछ प्लान किया हुआ है आपने ईद के लिए, आइए मुझे जरा बताइए 3311063 पर। ईद की मुबारकबाद भी आप दे सकते हैं और अगर कोई स्पेशल मैसेज है आपका किसी को जो आप देना चाहते हैं सो वो भी कर सकते हैं। सो अमेजिंग अमेजिंग ईद जो है आपकी रहे, बस यही होप करती हूँ मैं।
2: इस ईद बनाए हर पल यादगार
1: विद रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
2: स्टे ट्यून्ड।
0: फिलहाल आदित्य रिखारी की आवाज में मेरा फेवरेट गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और ईद मनाते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए सी यू बिंदास।

0: कवर मॉल विशेस यू ईद मुबारक।
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: This is Amira Dastoor. Eid Mubarak on Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
6: Radio Olive Eid Majlis.

देखिए एक्सपेक्टेशन ईद पर जब आप तैयार होते हो तो कुछ ऐसा ही होता है कि आपके पार्टनर जो है वह कुछ इसी तरीके से आपके लिए गाना गाएं, आपकी तारीफ करें, लेकिन लड़कों को कैसे समझाया जा सकता है।

ईद मजलिस। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और ईद मजलिस आप एंजॉय कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। एंड जब भी लड़कियां तैयार होती है ना ईद के लिए, तो उनके मन में बस एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई उनकी भर भर के तारीफ कर दे। लेकिन किस तरीके समझाया जा सकता है, लोग तो तारीफ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, उन्हें तो सिर्फ खाने में इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, आप किस तरीके की तारीफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमें 3311063 पर मैसेज करके बता दीजिए। बाकी आज मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। मैं किस तरीके से तैयार हुई हूँ ये भी बताऊंगी थोड़ी सी देर में, एकदम डिटेल में, तो आप भी मेरी तारीफ कर सकते हैं। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। गाने का नाम उड़ दी फिरा। इस गाने को एंजॉय कीजिए, मैं जरा आईना देख कर आती हूँ। कहते रहिए जी ओबिंदा।

0: Cosmo Travels wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
3: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
4: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
3: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
4: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
5: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक. यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद.
6: हाय, दिस इज कैलाश थे.
7: कैलाश थे.
6: रेडियो ऑलिव के सभी सुनने वालों को ईद मुबारक. हैप्पी ईद टू ऑल.
7: हैप्पी ईद टू ऑल.
0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.

0: आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
4: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 riyals growth पर पाइए एक coupon.
4: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
3: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: Sky Z wishes you Eid Mubarak.
6: Radio Olive Eid Majlis.

0: जिस तरीके से मैं आज लाल दुपट्टा पहन के आई हूँ, दुल्हन से कम नहीं लग रही हूँ। बट इट्स ऑलवेज नाइस टू बी ओवर ड्रेस्ड देन बीइंग अंडर ड्रेस्ड, मतलब ऐसा मुझे लगता है।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और ईद मजलिस आपके लिए लेकर आ गई हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो जुट रहे हैं, मुझे ईद मुबारक कह रहे हैं, लेकिन उसमें आपका नाम कहीं नहीं दिख रहा है। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। आइए मेरी ईद को थोड़ा और बेहतर बना दीजिए, क्योंकि घर से दूर ईद मनाने का क्या गम होता है ये आप तो अच्छे से जान ही सकते हैं। तो अकेली हूँ मैं यहाँ पर, सो थोड़ा सा मुझे घर वाली फील दे दीजिए, ईद मुबारक कह दीजिए, ऑडियो नोट भेज देंगे तो और बढ़िया होगा, क्योंकि मेरा मन तो यही कह रहा है कि थोड़ी ही सही लेकिन घर की याद तो आ रही है। फलक शब्बीर की आवाज में नौटंकी साला मूवी से ये ट्रैक आपकी नजर आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाइए, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन दास।

0: हैरत तो देखिए है, क्योंकि किस तरीके से एक अनजान शहर, एक अनजान देश जो है वो आपका खुद का बन जाता है जब लोगों का प्यार आपको मिलने लग जाता है।
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आप सबको ईद मुबारक। एंड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यार थोड़ा अजीब सा लगता है, थोड़ी ही सही लेकिन घर की याद जरूर आती है जब आप घर से दूर होते हो। और उसके लिए मैंने कुछ आपसे कहा था कि थोड़े प्यारे प्यारे विशेष दे दो मुझे, ताकि मुझे अच्छा अच्छा फील होने लग जाए। एंड लोगों ने सच में प्यार से बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। मोहम्मद जुबेर जी ने जो है वो मुझे मैसेज किया है ईद मुबारक, एंड उन्होंने ईद मुबारक लिखने के बाद मुझसे जब मैंने उन्हें प्यार से ये कहा था कि यार मुझे विश कर दो, तो उन्होंने बहुत प्यार से ईद मुबारक मैडम लिखा है। एंड उसके बाद अजीज खान जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी ईद मुबारक कहा है। असमा जी ने जो है वो एक ऑडियो नोट भेजा है प्यारा सा, जो मैंने सुन लिया है लेकिन आप लोगों को सुनाने के लिए थोड़ा सा इंतजार में कराऊंगी। एंड मोहम्मद जुबेर जी जो है वो मुझसे मांग रहे हैं ईदी, मैडम ईदी, मेरी ईदी। देखिए मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे तो थोड़ी सी छोटी ही हूं, तो ईदी मांगना मेरा बनता है। आप बताइए 3311063 पर कि इस वाली ईद में क्या ईदी मांगना हमारा जायज है, क्या बनता है कि नहीं बनता है।
2: Experience the true spirit of Eid togetherness and joy.
3: Enjoy on Radio Olive 106.3 FM.
0: फिलहाल पति पत्नी और वो दो मूवी से हमने वही लगाया दिल।
4: जमाने की तरह
0: सो ये गाना एंजॉय कीजिए एंड थोड़ी सी देर में मैं लौट के आऊंगी और मैसेजेस के साथ। एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदा।

0: जूरी ट्रेवल्स विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में, योर Ultimate Eid Destination.
4: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर। ईद मुबारक, जियो बिंदास।
0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: उर्वशी उर्वशी तो नहीं, लेकिन लोग कशिश जी जरूर कर रहे हैं।
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। एंड मैंने जैसे कहा था कि मुझे जल्दी जल्दी आकर व्हाट्सएप पर विश कर दो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे विश करना शुरू कर दिया है। रिफत हुसैन जी ने जो है कहा है कि आपको ईद बहुत बहुत मुबारक, सो आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद जुबेर जी मुझसे लड़े जा रहे हैं ईदी के लिए कि मुझे ईदी चाहिए, मुझे ईदी चाहिए। मैंने तो कह दिया देखो मैं छोटी हूँ, मुझे अब ईदी चाहिए। उसके बाद अति आवाज जी ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कशिश जी। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत सारी ईद मुबारक। और आसमा जी की ऑडियो जो है मैं प्ले कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे सच में रोना आ गया था उनकी ऑडियो सुनकर, जिन्होंने कहा कि आप कतर में नए हो, वेलकम एंड ईद मुबारक। सो थैंक यू सो मच आसमा जी, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ऑडियो भेजा एंड इट फील्स रियली नाइस, सो थैंक यू सो मच। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, आप भी चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम बातचीत जो है वो जारी रखेंगे 3311063 पर। फिलहाल गाने का नाम है तुम जो मिलो, मैं तो देखो यही मिलने वाली हूँ। फ्रेडी मूवी का ये गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it. Carrefour wishes you Eid Mubarak.
3: Radio Olive Eid Majlis.

0: वैसे तो मैं इतनी ज्यादा रैप की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा था। वेलकम बैक जी, गुड आफ्टरनून 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और ईद मजलिस आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि थोड़ी सी देर में अपने आउटफिट के बारे में आपको बताऊंगी, सो मैं जो है आज बड़ा ही प्यारा सा एक बेज कलर का आउटफिट मैंने पहना हुआ है, एक अनारकली सूट मैंने पहना है, बहुत सिंपल सा है, साथ में एक रेड कलर का लाल कलर का दुपट्टा जो है वो मैंने पहना हुआ है विथ झुमकाज एंड विथ माई फेवरेट बैंगल्स। अब देखिए पिछली ईद में जो है कश्मीरी चूड़ियां काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और अब जो है जेली बैंगल्स काफी ज्यादा इन ट्रेंड है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार आज क्या पहनूं, अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि अब रिश्तेदारों के घर जाना है, तैयार होना पड़ेगा तो क्या पहनूं, सो आप मेरे आउटफिट से इंस्पो ले सकते हैं। मैंने क्योंकि पिंटरेस्ट पूरा छान मारा था कि क्या कुछ चल रहा है एंड क्या कुछ पहना जा सकता है, सो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि आज ये पहनती हूं, क्योंकि बेज जो है वो काफी इन है इस वक्त अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो, और साथ में एक कॉन्ट्रास्टिंग ब्राइट कलर का अगर आप दुपट्टा पेयर करते हैं सो कहीं ना कहीं आपका आउटफिट ज्यादा लाउड भी नहीं लगेगा और ज्यादा आप बेसिक भी नहीं लगोगे। वरना कई बार हमें घर पे तो ऐसा लगता है कि यार हम बहुत ओवर करके जा रहे हैं, लेकिन जब हम वेन्यू पे पहुंच जाते हैं बाकी लोगों को देखते हैं तो देखते हैं यार बहुत अंडर ड्रेस लग रहे हैं यार हम तो।
1: मिलन का त्योहार, प्यार का पैगाम, आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक,
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
0: सो ईद मुबारक आपको कह दिया है, अब फिलहाल मैं खुद को ये गाना डेडिकेट कर रही हूँ, सो आप मेरे साथ ये गाना एंजॉय करो, मुझे इमेजिन करो, और अगर इंस्टाग्राम पे आके मुझे देखना चाहते हो सो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल मुझसे शादी करोगी मूवी से मेरा फेवरेट गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास, ईद मुबारक।

0: Zuri Travels wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए

0: तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hey guys, this is Varun Dhawan और आप सुन रहे मुझे on Radio Olive 106.3 FM and आप सभी को कतर में ईद मुबारक।
5: Radio Olive ईद मजलिस।

0: सी लैंग्वेज का गाना है ये, अभी तक मुझे समझ नहीं आ पाया है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: और एक बार फिर से आपको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। एंड आप लोग मुझे काफी सारे लोग मतलब मैसेज करके मुझे बता रहे हैं कि क्या प्लान्स हैं आज के और किस तरीके से जो है आज ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखो आज तो काफी सारे लोगों का रूटीन काफी सिमिलर रहा होगा, वो सुबह उठे होंगे, नमाज पढ़ी होगी, उसके बाद फिर फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट करने गए होंगे बाहर, है ना। अब घर पे आके तैयार होके थोड़ा रेस्ट करके फिर जाएंगे लंच या डिनर के लिए। एंड देखिए अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है आपका, सो बहुत सारे अमेजिंग इवेंट्स जो हैं वो हमारे कतर में हो रहे हैं जहां पर आप इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहां मैं भी जाने की कोशिश करूंगी वो है ईद फायरवर्क्स इवेंट एट कतारा। सो कतारा पे जो है 4 बजे से बहुत सारे इवेंट्स, यानी 4 PM से लेकर 8:30 तक जो है बहुत सारे इवेंट्स होंगे। एंड 8:30 पर आप वहां पर अमेजिंग फायरवर्क शो जो है वो इंजॉय कर सकते हो। उसके साथ अगर मैं बात करूं ईद अल अधा फैमिली फेस्टिवल जो है वो होने वाला है बीच पे, सो आप अगर एक बीच पर्सन है सो आप वहां जाकर भी ईद इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद ईद बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं अक्रॉस दोहा फेस्टिवल सिटी, सो आप मेहंदी जो है वो लगवा सकते हैं, यानी हिना आर्ट करा सकते हैं। एंड भी बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चों के लिए भी अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज की गई है। लाइव परफॉर्मेंसेज एट मरीना जो है वहां पर भी आप जा सकते हैं। सो बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग जगहें हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गई ये लिस्ट में आपको क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। वैसे आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके कि आखिर आपका क्या प्लान है, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि कशिश एक बार यहां जाकर ट्राई करो, सो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं तो बस इंतजार में बैठी हूं कि यार कोई मुझे बता दे और मैं वहां चली जाऊं, क्योंकि मैं ना कतर में पहली बार ईद उल अधा सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत आए हैं। बिकॉज पिछली ईद पे ना मैंने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया था, मुझे लगा था यार फैमिली से दूर हूँ तो कितना ही इंजॉय कर लूंगी, लेकिन कतर ने मुझे बिल्कुल भी पराया फील नहीं होने दिया। सो इस ईद के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। सो आप मुझे जल्दी जल्दी से फ़ोन उठाइए, मैसेज कीजिए कि आखिर कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ। 3311063 इज़ माई नंबर। मान मेरी जान,
2: मैं उदासी कभी देख सकता नहीं।
0: किंग के साथ ही गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: देखो कोई कहे या ना कहे, मैं तो खुद को ये कह देती हूँ कि देखो मेरी तो बात ही कुछ और है, मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, आपको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अब देखिए वो क्या है ना कि कोई मेरी तारीफ कर नहीं रहा था, सो मैंने खुद की ही तारीफ कर दी। इंस्टाग्राम पे जाकर आप देख सकते हैं, मैंने जो है आज का अपना ओओटीडी यानी आउटफिट ऑफ द डे जो है वो स्टोरी पर पोस्ट किया हुआ है, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्यारा सा, मतलब बहुत ही अमेजिंग सा गाना जो है वो मैंने उसमें लगाया है, क्योंकि कोई और मुझे उस गाने में पोस्ट नहीं कर रहा था। मतलब मैंने काफ़ी वेट किया कि जब से ये जो गाना है रिलीज हुआ है तब से मेरी स्टोरी पोस्ट हो जाए या मुझे कोई भी इस गाने पे मेंशन कर दे, लेकिन अब बहन की आपकी ऐसी कोई हरकतें तो है नहीं कि कोई प्यार से इस गाने पे पोस्ट कर दे, तो बस फिर खुद से खुद को प्यार करेंगे हम और खुद को खुद गाना जो है वो डेडिकेट भी करेंगे हम। सो कौन सा गाना है ये वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बार आपको ईद मुबारक कहना चाहूंगी।
2: मिलन का त्योहार, प्यार का पैगाम, आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
3: ईद मुबारक, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
0: और जिस गाने की मैं बात कर रही थी ना वो है ये वाला गाना। तो जितनी भी मेरी बहने हैं जो मस्कारा, ब्लश, लिपस्टिक अभी लगा रही हैं, उनके नजर ये गाना। और लड़कों अगर तक अभी तक आपने अपनी पार्टनर के लिए ये गाना स्टोरी पे नहीं डाला है, क्या कर रहे हो यार। मैं वापस आऊंगा का मस्कारा गाना, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Bradma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Bradma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
8: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
9: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस

0: देखिए एक वक्त हुआ करता था जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर ईद पर बिरयानी इंजॉय की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ वीडियो कॉल ही रह गया है। देखो
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और ईद मजलिस आपके लिए लेकर आ गए और आप सबको ईद मुबारक। सो जिन लोगों ने भी मुझे अभी अभी सुनना शुरू किया है उनको मैं बता दूं कि मैं अपने घर को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, तो 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईद विश कर सकते हैं और थोड़ा और घर के करीब जो है वो फील करा सकते हैं। अब देखो यार, आप ना जब घर पे ईद इंजॉय कर रहे होते हो आपको बिल्कुल रियलाइज नहीं होता कि हो सकता है कि अगली ईद हम इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें ही ना। मैंने पिछली ईद पे बहुत नाटक किया था कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मुझे मैगी खिला दो, मुझे ये बिरयानी नहीं खानी, मुझे रायते में नमक कम लग रहा है। और इस ईद पर लिटरली मैं इतना तरस रही हूं ना एक अच्छी बिरयानी के लिए कि मैं क्या बोलूं। कभी कभी हमें वैल्यू नहीं होती है जो चीज़ हमारे पास होती है, लेकिन कोई बात नहीं जी, अब हो गई है वैल्यू। आप मुझे बताइए कि आप इस ईद पर क्या कुछ खास कर रहे हैं, 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना, आपकी नजर आपके रेडियो सेट्स पर। ये गाने ने भी कह दिया था कि नहीं नहीं मैं इतने आसानी से नहीं चलूंगा। सो ये टाइगर श्रॉफ के टाइगर श्रॉफ की आवाज में ये गाना है। मैंने भी नहीं सुना है। सो आप एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करती हूँ, बाकी थोड़ी सी देर में आती हूँ, बातचीत जारी रखेंगे। ईद मुबारक एंड जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: मर्ज़ा हाइपरमार्केट विशेस यू ईद मुबारक।
4: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: कुछ गाने होते हैं जो आपको समझ आते हैं, कुछ गाने होते हैं जो आपको समझ नहीं आते लेकिन अच्छे लगते हैं। ये गाना वो है जो मुझे समझ भी नहीं आता और उतना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन थोड़ी थोड़ी वाइब आ जाती है।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड मैंने जब आप लोगों से ये पूछा कि ईद पर कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, सो कुछ लोगों का रिप्लाई ये आने लग गया कि कशिश आप जो है वो इंडिया जा सकती हैं। वाओ, आपको ऐसा लगता है कि इस 4 दिन की छुट्टी में मैंने इंडिया जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, लेकिन क्या है ना कि डायरेक्ट फ्लाइट मेरे घर के लिए बिल्कुल नहीं है, एंड अगर मैं जाने की कोशिश करती तो मुझे घर पे सिर्फ एक दिन का मौका मिलता, मतलब एक दिन बिताने का मौका मिलता, जिससे बेहतर है मैं इतनी भाग दौड़ करके इतना खर्चा करके इंडिया जाऊं और वहां रुक भी ना पाऊं, तो कोई मतलब नहीं है ना यार। इसीलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, कतर की ईद इंजॉय करते हैं, जो मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही। अब देखिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँगी, मुझे थोड़ा लाइवली सा फील आएगा। अब अगर ट्रैवल करती तो थकान वकान हो जाती, फिर क्या मतलब होता। इसलिए मैं नहीं गई। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि ईद घर पे मना लेते हैं, लेकिन फिर ये रियलाइज़ होगा कि यार टिकट्स कितनी महंगी है, ये रियलाइज़ होगा कि यार आधा टाइम तो ट्रैवल करने में चला जाएगा, फिर अपनों के साथ जो है टाइम भी नहीं बीत पाएगा, थकान भी हो जाएगी, और फिर अगले दिन से फिर ऑफिस भी ज्वाइन करना है। इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया आइडिया पे, और लिपस्टिक लगाकर मैं आ चुकी हूँ ऑफिस। सो बस अदनान सामी जी की आवाज में ये ट्रैक आ रहा है रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। और बाकी अदनान सामी जी का एक अमेजिंग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिमरन जी ने लिया हुआ है, वो आपको रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगा। इसी गाने के बारे में बातचीत हुई है, सो जल्दी से जाइए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर और वहां जाके चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Silks wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
3: Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Here's Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
4: हाय, मैं हूँ श्रुति पाठक और कतार में रहने वाले सभी लोगों को ईद मुबारक. ईद मुबारक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास. जियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.

वीर जारा मूवी का ये ट्रैक एंजॉय कर रहे थे आप 106.3 रेडियो ऑल पर. एंड ये कुछ गाने होते हैं जो ईद की वाइब को और ज्यादा इन्हांस कर देते हैं कि नहीं. इस ईद का अफसाना तो सालों सालों तक मुझे याद रहेगा.

106.3 रेडियो वाले पर मैं हूँ आपकी कशिश। वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी कशिश एंड ईद मजलिस पर आज आपको ईद विश कर रही थी एंड ईद की वाइब को और ज़्यादा इन्हेंस करने की बस मैं कोशिश कर रही थी आपके लिए एंड बहुत कुछ खास हमने बातचीत की, मेरे OOTD के बारे में बात की, आपके OOTD के बारे में बात करी, कहाँ आप लोग जाने वाले हैं इसके बारे में बात करी। अब देखते हैं कि जो है मेरा जो कटारा जाने का आज प्लान है वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है एंड अगर आप लोग भी वहां पर आ रहे हैं तो प्लीज मुझे ढूंढ के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लाल दुपट्टे में एक अनारकली पहने हुई लड़की आपको दिखी जाएगी। सो आइएगा, मिलेगा। बाकी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर आप हमसे बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं। 3311063 पर अपनी ईद विशेज जो है वो आप भेज सकते हैं। तनीषा सिमरन अभी आपसे बातचीत करने के लिए आने ही वाले हैं, तो मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा। गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, अपनों को मेरा भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड मुझे भी आप सबका बहुत सारा प्यार जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी सा लगता है। सो कल मुलाकात होगी वापस सेम टाइम सेम प्लेस यानी 106.3 रेडियो ऑल। फिलहाल अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। प्लेयर्स मूवी का ये ट्रैक है मोहित चौहान का, दिल ये बेकरार क्यों है। आज ईद सेलिब्रेट करने के लिए मेरा दिल भी काफी बेकरार है। सो ये गाना एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, जियो बिंदा।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: मरहबा दोहा, समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर, बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स। एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज, शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश टफल बैग। यस, एब्सोल्युटली फ्री, बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर। हेड टू द न्यूली Open R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22-carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: Mornings and nights.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: एंकर मिल्क विशेस यू ईद मुबारक.
4: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.

करिश्मा कपूर क्या खूबसूरत लग रही थी यार इस गाने में। वही तो हम बोलते रहते जियो बिंदास यार, स्ट्रेस क्या लेना है लाइफ में। धड़कने और गट फीलिंग, इन दोनों की बातें जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सही होता है। बचा तो देखो बहुत कुछ है, सब चीजों के बारे में बात होगी, पर सबसे पहले आपकी बात होगी क्योंकि आप है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो 3311063 पर आ जाइए, बताइए क्या प्लान्स है, क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है सेलिब्रेट करने के लिए, और क्या क्या खाया है, क्या क्या पहना है, सब जानना चाहती हूँ मैं। वेरी एक्साइटेड फॉर यू यार, तो आ जाओ फटाफट से। फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की आवाज में हाथू है, ब्रांड न्यू ट्रैक ऑन रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: Taufik Travels wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव पर. ईद मुबारक. जियो बिंदास.
6: रेडियो ओलिव ईद मजलिस. ईद मजलिस.
7: This hour is brought to you by
8: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
9: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

लता और उदित नारायण साहब की आवाज में दिल तो पागल है सैयद शांत ने कुछ कहा प्यार कर। जी हाँ, प्यार करना तो बनता है, एक जिंदगी मिली, अब इसमें भी हम क्या गुस्सा करते रहेंगे और क्रिप करते रहेंगे क्या। प्यार से जिंदगी बिताओ, खुद से प्यार करो, अपने आसपास वाले लोगों से प्यार करो और यू नो खुशनुमा माहौल रखो यार, और क्या। तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर, और ऐसा ही कुछ माहौल था कल जब हम गए ईद मजलिस के लंच पर, एंड सो मच फन, लव एंड वार्मथ वाज देयर। मतलब सारे लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा, और इतने प्यार से मिलते हैं ना, ऐसा लगता है कि पहली बार मिल नहीं रहे, यू नो बरसों से जानते हैं एक दूसरे को, साथ ही पले बड़े हैं, तो दैट कनेक्शन, दैट वार्मथ इज सो सरियल, इट मेक्स मी फील सो प्रिविलेज्ड एंड सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए मेरी जान, एंड ईद सेलिब्रेशन में पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेस्ट ऑफ द पीपल हु कुड नॉट कम, डोंट वरी, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है, ये तो एक ही सेलिब्रेशन था, देयर आर अ लॉट मोर टू कम, ठीक है। तो हम मिलेंगे जरूर, बट यहाँ तो हमारी बातें होती रहती है, आ जाओ, मैसेज कर दो, बता दो कैसे हो, 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: Castle Infrastructure WLL wishes you Eid Mubarak.
7: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
8: This hour is brought to you by
9: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
10: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

एपी टुला की आवाज में दिल नो ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा के साथ सुना आपने। ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर और यहाँ पे मुझे ढेर सारी पिक्चर्स आ रही है, सुंदर सुंदर कपड़ों में फोटोज भेज रहे हैं लोग, क्या खूबसूरत माशाल्लाह ड्रेसेस मिली है एंड साथ में टेस्टी टेस्टी खाने की भी फोटोज आ रही है। भूख लग गई ना मुझे ये देख के, खा के आई थी मैं, अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है। और जो ये सेवियां की फोटो भेजी है ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है, मेरे को बहुत जोर से मन कर रहा है खाने का और मुझे बनानी भी नहीं आती है। नाउ आई हैव टू फिगर इट आउट, या तो मुझे किसी फ्रेंड से कहना पड़ेगा बना के दो मुझे, या फिर कहीं से ऑर्डर करनी पड़ेगी, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यस और भी, बट मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग बैड अबाउट दिस एट ऑल, आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि आप मुझे यू नो अपने सेलिब्रेशंस का पार्ट बना रहे हो। तो प्लीज कीप सेंडिंग दिस, यस 3311106 पर भेजते रहिए ये तस्वीरें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार फिर से ईद मुबारक मेरी जान, आई होप दिस ईद ब्रिंग्स ऑल द गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स इन ऑल आवर लाइव्स। स्टे ट्यून्ड, एंड्रियो बिंदास।

You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha के साथ है, अब ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर. एंड यार एक बात बताओ, दिस हैपन्स विद मी अ लॉट. एक तो बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं और वो सपने मुझे इतने विविडली याद रहते हैं जैसे मैंने जी लिए हैं वो, बट इट इज अ ड्रीम. मुझे एक एक डिटेल याद रहती है एंड देन मुझे ये आदत है कि मुझे उन्हें डीकोड करना होता है. सो आई इंस्टेंटली जैसे ही उठती हूँ मैं मम्मा को कॉल करती हूँ कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे सपना आया एंड दिस वॉज वेरी वियर्ड एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट. अब आप डीकोड करके दो. सो अर्लियर माई नानी माँ यूज टू डू दैट फॉर मी एंड वो मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकाल के देती थी उसमें से. एंड देन She passed away. So now I go to my mom and वो भी सेम चीज करती है, कभी कुछ नेगेटिव निकाल के देती ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव. अरे बेटा ये हुआ, अच्छा तो इससे तेरे लिए ये अच्छा होने वाला है. एंड आई एम लाइक मम्मी ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो चीटिंग है. बट या आई हैव दिस थिंग, देन आई गो टू गूगल एंड ऑल और सारा फुल ड्रामा करती हूँ और उसके बाद सोचती हूँ यार सपना ही तो था, इतना क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ, लेट्स फोकस ऑन द वेक लाइफ. नो Do you also do that? This is what I want to know. बताइए मुझे जल्दी से मैसेज करके. और फिलहाल भेज रहे एक बहुत ही कमाल का गाना, सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर और ईद अल अधा के मौके पर तलाबात ने एक बहुत अमेजिंग चीज़ करी है. सो जो भी राइडर्स आ रहे हैं आपको आपका सामान डिलीवर करने के लिए, आप उन्हें जो भी टिप देंगे वो टिप को डबल करके उन राइडर्स को मिलेगा. एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग. उनके लिए भी ईदी हो जाएगी. एंड यू नो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंटली यू जस्ट ऑर्डर एंड यू गेट इट इन एन आवर या फिर जितनी जल्दी चाहिए होता है वो मिल जाता है, राइट? तो बनता है थोड़ा सा अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए उनकी लाइफ के लिए तो डू गिव द टिप्स. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट अगर देंगे तो अच्छा होगा. और अभी तो बहुत बढ़िया मौका है बिकॉज तलबात ने कहा है कि दे विल बी डबलिंग दोज टिप्स. सो बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, इसमें हमें भी पार्ट लेना चाहिए, राइट? सो डू दैट. एंड फिलहाल सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत गाना मधुर शर्मा और अशोक मस्किन साहब की आवाज में, बुलेआवे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha hai aapke saath. Eid majlis chal raha hai yahan par aur kisi ka to mujhe message aaya hai. Wo pehle shayad Kashish se baat kar rahe the jab wo show kar rahi thi aur abhi unki gaadi ka tire puncture ho gaya. Dukh ho raha hai mujhe is baat ka. And I hope aapki samasya ka samadhan aapko jaldi se mil jaye. Aur agar koi bhi kisi ko bhi aap aise dekh rahe hai na in any situation jahan pe unhe thodi bahut madad ki zarurat ho sakti hai. So agar aap kar sakte hain, aapke paas waqt hai to please kijiye. बिकॉज कई बार बहुत हेजिटेंट होते हैं लोग, एक तो हेल्प मांगने में, और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप काफ़ी हेल्पलेस फील करते हैं. सो जस्ट यू नो एम्पैथेटिक, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अगर ये भाई साहब जिन्होंने मुझे अभी मैसेज किया है कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, आपको आसपास कहीं नज़र आ रहे हैं एंड ही नीड सम हेल्प, डू हेल्प हिम आउट. समबडी नीड्स वाटर, गिव देम द वाटर. मेरे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड इट जस्ट मेक्स द वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस कि वी ऑल आर आउट देयर रूटिंग फॉर ईच अदर. कोई किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता है, कोई किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता है. यू नो वी ऑल आर देयर चेयरिंग फॉर ईच अदर. आप मेरे लिए चेयर करो, मैं आपके लिए चेयर करूँ, क्या बढ़िया हो जाएगा सब कुछ यार. कॉम्पिटिशन ना सारा काम खराब कर देता है अगर वो नेगेटिव हो जाए तो. If it is positive, well and good. So all in all, I'm trying to say is ki be empathetic towards people and you will be contributing in making the world a better place. Yes. Sending a beautiful track your way. Stay tuned on Jio Bindaas.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 FM पर. ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर एंड एक लॉ जो है वो ड्राफ्ट किया गया है फॉर ऑल द प्राइवेट स्कूल्स. यस एंड इट इज बेसिकली टू कलेक्ट पब्लिक फीडबैक. देर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड शरेक. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. SHAREK दैट इज द प्लेटफॉर्म. वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं उस ड्राफ्ट को और अपना फीडबैक दे सकते हैं विद इन नेक्स्ट 10 डेज. तो जाइए चेकआउट कीजिए इफ यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. और मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए राइट नाउ. दैट्स व्हाई I'm sending an amazing track your way. Stay tuned and you're with us.

0: your happiness frequency. Jio Bindas.
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: टॉफिक चाचा, ईद मुबारक।
3: आप
2: चाचा? मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
3: अरे मियां, टॉफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
4: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
5: हेलो हेलो, टॉफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ। क्यों चचा?
6: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
7: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटे।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varatma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varatma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: हाय दोस्तों, मैं हूं अरमान मलिक और मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक। एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस। ईद मजलिस।
8: This hour is brought to you by
9: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
10: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: You're listening to Radio 106.3 FM. Dinisha ke saath hai aap aur waqt ho chuka hai lame jams ka.
1: Lame jams.
0: का आज का मेरा सवाल है कि एक इंसान जिसके ऊपर राइस गिर जाए उसे क्या बोलेंगे? A person is sitting and the rice fell on his head. तो उसे क्या बोलेंगे एक वर्ड में? अंग्रेजी का शब्द है, उसे ऐसे संधि विच्छेद करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आपको ये पूरा सेंटेंस उसे एक वर्ड में पता चल जाएगा. सो टेल मी व्हाट इज दैट वर्ड. 3311106 पर मैसेज कीजिए और बताइए. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Skyline Automotive wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
4: Hey, this is Liliana De Cruz, and here's wishing all you listeners a very happy Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
6: Radio Olive, Eid Majlis. Eid Majlis.
7: This hour is brought to you by
8: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
9: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

You're listening to Radio 106.3 FM. Dinisha ke saath hai aap. Dholi taro dhol baje. कविता कृष्णमूर्ति और विनोद साहा की आवाज में हम दिल दे चुके हैं। सरा मूवी से आपने ये गाना सुना है, व्हाट एन अमेजिंग मूवी यार। ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत लगी है, स्पेशली उन साड़ीज में जो उन्होंने अपनी शादी के बाद पहनी है, ब्यूटिफुल इथीरियल गॉर्जियस। और जब वो अभी अपने कैंस में उन्होंने अपीयरेंस दिया, पीपल वेंट क्रेजी। दो शी वॉज लुकिंग ओके, आई डिड नॉट रियली लाइक द आउटफिट, बट हु एम आई टू जज, she is the queen यार। But yeah, अलग ही ऑरा है उनका, अलग ही रुतबा है। The way she used to give the interviews, you know, उनके जो पुराने interviews rotate होते रहते हैं social media पे, so poised, so confident and so on point. Love her for that. Welcoming back to the lame jams, जो मैंने सवाल पूछा था कि अगर एक इंसान के ऊपर, you know, उनके head पर चावल गिर जाए, राइस गिर जाए, तो उसे क्या कहेंगे एक वर्ड में। I've got a few answers over here, उसमें से कुछ करेक्ट है और कुछ गेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिख के दे रहे हैं कुछ भी। बट एक मौका और देना चाहूंगी, चलो ये एक और चांस है आपके लिए। बताएं मुझे, सोचें एक बार और, एक इंसान है, उनके ऊपर, उनके हेड के ऊपर, सर के ऊपर चावल गिर गए, राइस गिर गए, तो एक वर्ड में, एक इंग्लिश का वर्ड है, उसमें क्या कहेंगे उन्हें। उस वर्ड को जब आप ब्रेक करेंगे ना, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सोचिए और बताएं 3311 1063 पर। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑनर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Bhai, Eid Mubarak.
6: Eid Mubarak.
5: Taufik Chacha, Eid Mubarak.
6: आप
5: चचा? मैं इब्राहिम।
6: हर जुमेरात आता
5: तुम्हारी बिरयानी खाने को।
7: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
9: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां।
7: क्यों चचा?
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटे।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीर डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: स्काई ज्वेलरी विशेस यू ईद मुबारक
8: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस
9: This hour is brought to you by
10: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
11: Commercial Bank. We are saving more. Turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Radio Olive. Nisha.
1: तनी शो के साथ है आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. ईद मजलिस चल रहा है यहाँ पर एंड मैंने लेम जैंस में आपसे पूछा था कि एक इंसान बैठा है उसके हेड के ऊपर सर के ऊपर चावल गिर गए राइस गिर गए तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे एक वर्ड में. एंड फाइनली आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स ओवर हियर. इनिशियली भी कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिए थे सेकंड चांस में और लोगों को आ गए हैं और जिन्हें नहीं आए कोई बात नहीं यार इट्स ओके होता रहता है. एंड यस द करेक्ट आंसर इज सरप्राइज व्हेन यू ब्रेक इट सरप्राइज यू नो लाइक दैट. आई नो गुस्सा होगा. Calm down, Miri Jan. Calm down. I told you it is lame terms. You signed up for this, okay? So, thank you so much for all the people who have participated. You know, Faisal, Rifat, and Kuwar, Seema. Some people just have emojis instead of their names. So, naam likh diya kijiye so that hume pata chale ki kaun hume message kar raha hai. You know, yaad rehte hume naam. Theek hai? So, likh ke bhejna agli baar se. Aur filhal bhej rahi hu ek badhiya sa gana. Maza aayega jise sunke. Stay tuned and Jio Bindas.

0: This is Saif Hashmi from Ahmed Al Maghribi family. On the joyous occasion of Eid, we wish you and your loved ones peace, happiness, and prosperity. Eid Mubarak to everyone.
1: Happiness free में बढ़ रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनेस.
4: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
5: Shackman की पावर पैक रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
6: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक. यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद.
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Eid majlis chal raha hai yahan par. Baatein karte karte kab waqt nikal gaya pata hi nahi chala. Abhi waqt ho gaya mere jaane ka, meri jaan. Kal milte hain dopahar 2 baje. Tab tak aap apna khayal rakhiyega. Badhiya mazey se apna Eid ka celebration kijiye. Chuttiyan plan to kar hi rakhi hongi. Kahan ja rahe hain, kya kar rahe hain, share karna chahte hain to bindaas aa jaiyega 3311-1063 par. Aur agar abhi tak hame follow nahi kiya hai to Radio Olive ke Insta, Facebook ko bhi follow kar lijiye. radioolive.qsz handle. हमने जो कल सेलिब्रेशन किया है उसकी भी झलकियां आपको वहां देखने मिल जाएंगी. अलॉन्ग विद दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, सब वहां पर पोस्ट हो रहा है. सो चेकआउट कीजिए जाकर, यू नो, लाइक शेयर कमेंट कीजिए उस पर. सुदेव और मैंने कल एक फनी वीडियो डाला था, वो भी चेकआउट कीजिएगा, उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा. और कोई भी फीडबैक है ना हमारे लिए, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमें बता सकते हैं. जी हाँ, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी बात इम्पॉर्टेंट है. सो बिंदास आ जाइए वहाँ पर और अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
5: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
4: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid Destination. Al Abdulghani Motors wishes you Eid Mubarak.

0: कोई शट अप तो नहीं हो सकते हैं। चार घंटे सिमरन कौर गई है।
1: रेडियो ईद मजलिस, ईद मजलिस।
0: मुबारक हो, दुआ में याद रखिएगा दो।

होने वाला सीन होना चाहिए। आपका सिमरन कौर आ चुकी है और बताओ क्या हाल चाल है, कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? छुट्टी छुट्टी तो आपकी कल से चालू है यार, ठीक है यार, थोड़ी सी जेलसियां होती है मेरे को, बट दैट्स ओके, आप लोग फन कर रहे हो बस उतना ही काफी है यार। आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस मुझे भेज दो 3311063 पर। आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं सो मुस्कुराओ।

0: Bravo Trading wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: हाय, मैं हूँ श्रुति पाठक और कतार में रहने वाले सभी लोगों को ईद मुबारक. ईद मुबारक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास. जियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस. ईद मजलिस.
7: This hour is brought to you by
8: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

आपके साथ मैं ना थोड़ी देर में ये दो गाने प्ले होंगे, सो प्ले तो होंगे, ऐसे मेरे दिमाग में आया आपसे पूछ लूं ये दो गानों में आपको क्या कॉमन लग रहा है।

इन दो गानों में कुछ कॉमन लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ईद मुबारक भी लिख दीजिएगा, सो अपने नाम के साथ भेजिए कि क्या कॉमन लग रहा है 3311063 पर। और एक चीज हर बार कॉमन है, वो है गर्मी। सिर्फ आई गेस 30 सेकेंड्स में गाड़ी में निकलने के लिए वेट कर रही थी और 30 सेकेंड में ऐसा लगा कि स्किन जो है ना वो जल गई है यार। 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस एंड आज का मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी 15% है, विंड जो है 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। प्लीज हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पीना मत भूलिएगा और फ्रूट्स भी खाओ ऐसे जो कि आपको एकदम हाइड्रेट करके रखते हैं।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
0: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: To all the listeners, Olive Suno Radio Network, I cannot wish you all a very blessed Eid Mubarak. May this Eid brings peace and safety to the Qatar and to all of people.
5: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: Shuka.
1: Radio Olive Eid Majlis.
0: अरे दोस्त, यही तो कॉमन था वर्ड माशू का उन दो गानों में। मैं क्या जी सुनियो के दादी की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ ईद मजलिस में एक बार फिर से स्वागत।

0: आप सबके मैसेजेस आ चुके हैं, शाबाश जी, अदील जी, रवि जी, राकिब जी, एन जी, अश्विन जी, फहीम जी, दिवाली जी, थैंक यू सो मच। नेम गेम भी खेलेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि आज नेम गेम जो है ना, आज थोड़ा सा जल्दी खेलूं और पहले देखूं कि कौन कौन जो है वो मुझे सुन रहा है। कोई बात नहीं, उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है बात करना आज के मैच के बारे में। राजस्थान और हैदराबाद का मैच चल रहा है और राजस्थान ने खेल स्टार्ट कर दिया है। 5.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 80 और अभी तक विकेट जो है कोई भी नहीं गया है। सो बताइए, राजस्थान को सपोर्ट करने वाला कौन कौन है राजस्थान से, हैदराबाद को सपोर्ट करने वाला कौन कौन है हैदराबाद से।
1: Presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most love kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Google ke site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: मरहबा दोहा. समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर. योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर. सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स. एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज. शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश टफल बैग. यस, एब्सोल्युटली फ्री. बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर. हेड टू द न्यूली ओपन R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it. ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid destination.
4: Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Yes, Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
5: Hello everyone, this is Sana Khan. Wishing you all Eid Mubarak. Eid Mubarak. You're listening to Radio Olive 106.3 Jio Bindas.
2: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry.

हाँ जी, ये गर्मा गर्म सी शाम में रोमांटिक से गाने कैसे लग रहे हैं बेबी? ईद मजलिस चल रहा है और ईद मुबारक आप सबको, है ना। ईद अल अदा की बहुत सारी एक्टिविटीज अपने कतर में अलग अलग जगह पे हो रही हैं। सो ईद अल अदा हिनत सलमा फार्म में जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए हो रही है। ओपन एयर फैमिली एक्सपीरियंस एंड फार्म टू टेबल हॉस्पिटैलिटी एंड उसके साथ साथ सनसेट गैदरिंग, पीसफुल मोमेंट्स एंड एनिमल इंटरेक्शन, पोनी राइडिंग, बाइसिकल फार्म टू वुड्स, ईद स्पेशल मेन्यू। सो बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। रात के 10 बजे तक जो चलने वाला है, दोपहर 3 से स्टार्ट हुआ है। टिकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। गो एंड हैव फन विद योर फैमिली। अगर आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसा प्लान किया नहीं है बट कहां जाना चाहिए, सो यस, हिनत सलमा फार्म जो है वो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। खाइए पिए, थोड़ी सी ईद की वाइब्स को इंजॉय करिए। और मेरे को इतनी जोर से छींक आ रही थी, मैंने रोक लिया यार बात करते करते, मैंने पता क्या किया, नाक को दबा दिया और छींक रुक गई है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हिनत सलमा फार्म जो है एक ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। और अगर मेरे को कोई और ऑप्शन दिखती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप जा पाए। ईद मुबारक।

0: आप जी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
4: ईद मुबारक.
5: ईद मुबारक.
4: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
6: आप
4: चाचा? मैं इब्राहिम.
5: हर जुम्मे रात आता
4: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
6: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
7: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
8: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में
9: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
8: क्यों चचा?
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
1: नसीम हेल्थ केयर विशेस यू ईद मुबारक रेडियो ऑलिव ईद मजलिस

0: देखो गाना सुनने के बाद तो बहुत सारे सवाल जो है वो जहन में आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मत सोचो। मैं गरी सोने की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। ईद मजलिस चल रहा है आप लोगों के लिए, ईद मुबारक एक बार फिर से। उसके साथ साथ एक मैच भी चल रहा है राजस्थान एंड हैदराबाद के बीच में, और राजस्थान अभी खेल रहा है 12.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 172 एंड 2 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। कोई फर्क नहीं पैंदा, सही ना जाए है, कोई किसी का दिल ना तोड़े यार, जो मर्जी हो जाए लाइफ में, दिल का दर्द बहुत ही खराब होता है, डॉक्टर भी उसको सॉर्ट नहीं कर सकता है यार। अभी फिलहाल के लिए ईद है, और ईद के टाइम पे अगर आपको अभी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है तो ये जो अगला गाना अब आएगा ना, मन कर जाएगा।
1: Presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadeem Vakra VFS Global ke side. Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports. Brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba. Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: चैनल सुला कतर विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
6: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
7: और 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
6: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
7: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
6: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
8: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
9: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
8: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
9: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
10: Hey guys, this is Varun Dhawan और आप सुन रहे मुझे on Radio Olive 106.3 FM and आप सभी को कतर में ईद मुबारक।
0: Radio Olive ईद मजलिस। ईद
11: मजलिस। This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

ईद मजलिस जो है वो आप सुन रहे हैं, ईद से जुड़ी एक्टिविटीज जो ही अपने कतर में हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। सो द गेट मॉल में भी ईद की एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कि आज से स्टार्ट होगी, 31 मई तक चलने वाली है, दोपहर 3 से लेकर रात के 10 बजे तक, जिसमें क्रिएटिव फैमिली एंगेजमेंट है एंड डेली वॉक इन वर्कशॉप एंड एक्टिविटीज है, कोजी हॉस्पिटैलिटी कॉर्नर्स है एंड उसके साथ साथ किड्स प्ले एरिया है, हैंड्स ऑन वर्कशॉप है एंड कॉफी एंड टी कार्ट है एंड किड्स मूवी स्क्रीनिंग है वहां पर। सो अगर आपका प्लान है कुछ शॉपिंग वगैरह करने का या फिर बाहर थोड़ा सा जाने का बच्चों के साथ, क्योंकि सबकी छुट्टी है, द गेट मॉल में चले जाइए, आपको ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो बच्चों से रिलेटेड मिल जाएंगी।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
5: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
6: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
5: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
6: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
5: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
7: ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यस, अनिल कपूर एंड मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी एंड ब्लेस्ड ईद।
8: हाय, मैं हूं मनन शाह और कतर के सभी रहने वालों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
9: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।
10: This hour is brought to you by
2: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: Halim Naren Şak, hoş geldin Yamaz.
1: Radio Alim Eid Majlis.
0: ईद मजलिस आप आज सुन रहे हैं सिमरन कौर के साथ, मैं गली सोने के दादी की हालचाल। ईद का माहौल है, जो ये ईद का माहौल है वो 7 से लेके 8 बजे के बीच में आप मीना डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहुंच जाइएगा दोहा पोर्ट। वहां पर एक फ्लावर ब्रांडेड बाइसाइकिल जो है वो मूव करेगा, जो कि बच्चों में जो है वो फूल और अरेबिक स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। सो मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप आसपास है तो 7 से लेके 8 बजे के बीच में आज ही के दिन सिर्फ है ना ये जो है वो बच्चों बीच में अरेबिक स्वीट्स एंड फ्लावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो जाइएगा, वाइब वैसे भी मीना जो है डिस्ट्रिक्ट वाली साइड, दोहा पोर्ट वाली साइड अलग ही होती है, मजेदार होती है। ईद मुबारक, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: Ibrahim bhai, Eid Mubarak!
5: Eid Mubarak!
6: Taufik chacha, Eid Mubarak!
7: Aap?
6: Chacha, main, Ibrahim.
5: Har Jumme raat aata hu,
6: tumhari biryani khane ko.
7: Arre miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi, tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
7: ए, हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
10: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम प्लाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: अमेरिकन हॉस्पिटल क्लिनिक्स दोहा विशेस यू ईद मुबारक
8: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस

0: आ गई यार, इतनी शिद्दत से काश किसी ने बुलाया होता यार। फिलहाल तो यही बुला रहे हैं मुस्तफा जाहिद। 7:07
1: ईद मजलिस,
0: सिमरन कौर आपके साथ एंड ईद मजलिस में आपका स्वागत है। ईद मुबारक।

0: अभी फिलहाल यहाँ पे क्या लगा, किसको क्या लगा, कितना स्कोर किया है. ओके, सो मैच चल रहा है राजस्थान और हैदराबाद के बीच में, और राजस्थान ने अपनी पारी खेल ली है. 244 244 रन का टारगेट दिया है, और अभी हैदराबाद आ चुकी है खेलने के लिए. अभी थोड़ी देर में मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है. सो या अपडेट आपको देने वाली हूँ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर्ट, कहते रहिए जी बिंदास.
1: Presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul pass. Madar Kadeem, Vakra, VFS Global K site, Oak Banafi, Metro K just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Harry wishes you Eid Mubarak.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: मरहबा दोहा. समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर. योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर. सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन, मेन एंड किड्स. एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज. शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश टफल बैग. यस, एब्सोल्युटली फ्री. बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर. हेड टू द न्यूली ओपन R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it. ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid destination.
4: Hi, this is me, Ritik Roshan, wishing all your FM listeners Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
0: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: ITL World Travel Management Company wishes you Eid Mubarak.
5: Radio Olive Eid Majlis. Eid Majlis.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: हनी सिंह.
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.
0: मैं ये नहीं सुनी हूँ कि दादी की हलचल. सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ.
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: लेकिन लाइफ में रियल होना जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो यस, व्हाट द वायरल में जो हनी सिंह ने बोल्ड स्टेटमेंट दिया है ड्यू टू मेडिकेशन, क्योंकि उनकी लाइफ में आपको पता है कि उनकी बैड हैबिट्स की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई एंड उसके साथ साथ उनका ट्रीटमेंट चला एंड फिर उन्होंने दवाइयां खाई. सो या जब आप बहुत सारी हैवी मेडिकेशंस लेते हो तो कभी कभी ये चीजें होती हैं. तो अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो दोस्तों. एंड सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास.

0: City Exchange wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid Mubarak. Here's Anil Kapoor and Malabar Gold and Diamonds wishing all of you a happy and blessed Eid.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream. Observe.

0: शान एंड गायत्री अय्यर की आवाज. आपका दिल नहीं होता किसी को देखे.
1: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस.
0: हांजी मैं कहती सुनियो की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल. सिमरन कौर है आपके साथ
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ.
0: बस एक रियलिटी चेक देना है, एक रिमाइंडर भी देना है कि जिस जगह ने और जिस इंसान ने आपको दुख दिया हो, जहां पे आप उस इंसान की वजह से और उस जगह पर आप रोए हो, उस जगह को कभी भी मत वापस जाना. मुझे पता है मेरे लाख समझाने के बाद भी आप जाओगे उसी जगह पे, जाओगे उसी इंसान से मिलोगे, उसी इंसान से बात करोगे, अंटिल और अनलेस आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ गए अंदर ही अंदर, आपको ना आने लगे कि नहीं यार अभी बहुत बस हो गया. क्योंकि क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आती है हर किसी की लाइफ में जहां पर आप उसी जगह पे वापस जाते हो जहां पर आपको जिल्लत मिली है, मतलब डिसरिस्पेक्ट मिली है ना, और उस इंसान की वजह से. और जब कोई समझाता है तो आप नहीं समझते हो. वो एक फेज आता है जब ये सारी चीजें हो जाती है और जब आपका बस हो जाता है, फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती है. फिर जब आपका बस हुआ फिर आप निकल लेते हो वहां से. सो आई होप ये अकल आपको बड़ी जल्दी आ जाए थोड़ी सी, क्योंकि बहुत मेंटली डैमेज होता है यार इंसान. ये था आज का रियलिटी चेक. भारी हो गया क्या? जरूरी है यार आप लोगों को बताना.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
4: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
6: Rafiq chacha, Eid Mubarak.
7: Aap?
6: Chacha, main Ibrahim.
5: हर जुम्मे रात आता हूँ
6: तुम्हारी बिरयानी खाने को।
7: अरे मियाँ, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
9: हेलो हेलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ। क्यों चाचा?
10: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझीकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।

0: शंकर महादेवन, अलीसा मेंडोसा की आवाज जी,
1: रेडियो ईद मजलिस।
0: अंजी मैं कहती सुनियो कि दादी की हालचाल सच या गाल। सिमरन कौर है आपके साथ। एक बात कहूं, ओहो हो, ये मैं अपनी सांसों को गाना डेडिकेट कर रही थी।

0: बस थोड़ी देर में ये गाने भी होने वाले हैं एंड मैच के बारे में बात करते हैं। आज का मैच जो है राजस्थान और हैदराबाद के बीच में चल रहा है। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 244 रन का टारगेट दिया है एंड हैदराबाद अभी खेल रही है 11 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 138 और 6 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो या वापस लौट के मैं नेम गेम खेलने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पे लिया जाए तो आपको मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। दोस्त टाइप करके रखो, बताऊंगी कब भेजना है आपने मुझे।
1: T20 Score Update Presented by
2: Brooks Cafe Sweetness that hits straight to the heart Dadda ki most love kulfi ab bilkul paas Madar Kadeem Vakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next Instagram pe follow karo and drop by today
1: Brought to you by Ibad Sports Gear up, game on All your sports needs at one place Ibad Sports Brand of achievements Contact 7733-9198
2: Boundaries hit, flavors ignite Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka With Desi Dhaba, taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: Jumbo Electronics wishes you Eid Mubarak.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: ईद मुबारक.
4: ट्रॉफिक चाचा, ईद मुबारक.
5: आप
4: चाचा? मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता हूँ तुम्हारी बिरयानी खाने को.
5: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: ए, हलो हलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ. क्यों चाचा?
8: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
9: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी.

0: ईद मजलिस।
1: मैं कहती सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर।

सारे ईद मुबारक के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच डार्लिंग। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन हम खेल सकते हैं एक गेम जिसका नाम है गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे मेरी स्क्रीन पे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ, बट मेक श्योर कि आप मुझे अपना नाम बता के व्हाट्सएप करिएगा। और व्हाट्सएप किस नंबर पे करेंगे? 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है। चलिए मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। आमिर, फहीम, अलविन, एनी, रवि, अदील, एक और अदील, जस्सा, श्री कुमार, यूसुफ, कियानी, शाहबाज, गुज्जर, शाहिद, विरुशिन, मोहम्मद, खादिम, अमायरा, सुमित। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो दोस्तों। माहा, थैंक यू सो मच। खालिद जी, वृशाली जी, केविन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जावेद खोकर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। ऋषक जी, थैंक यू सो मच। नबील कुरेशी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आपने नाम लिखना है। राम स्वरूप, विनय जी, थैंक यू सो मच। मिस्टर केशव जी, थैंक यू सो मच। कमलेश जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाफिज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। निरूपा जी, थैंक यू सो मच। फवाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रेशम जी, थैंक यू सो मच। गुड्डू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। माहा, नबील, मयासा, स्मृति, तस्नीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सूरज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रूबल जी, थैंक यू सो मच। अजीज जी, थैंक यू सो मच। मृषा जी, थैंक यू सो मच। एमजद जी, इद्रीस जी, थैंक यू सो मच। शेख जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रूबल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सावित्री जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रेहान जी, शिमर जी, थैंक यू सो मच। अदील, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं, और थैंक यू के साथ अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना मत भूलिएगा। और जिनके नाम, भूपिंदर जी आपका नाम भी ले लिया, रसल जी, थैंक यू सो मच। महफूज जी, थैंक यू सो मच आपका नाम भी ले लिया। अब जिनके नाम रह गए तो रह गए।

0: ईद मजलिस में ईद मुबारक एक बार फिर से आपको, और ईद के टाइम पे छुट्टी है, चिल कर रहे हो और बाहर भी हो, घूमना भी है, लेकिन मैच के बारे में अपडेट भी चाहिए तो मैं दे रही हूँ ना आपको अपडेट। राजस्थान और हैदराबाद का मैच चल रहा है। राजस्थान ने पहले खेलते हुए 244 रन का टारगेट दिया और हैदराबाद अभी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। 16.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 174, 8 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, सो 22 बॉलों पे 70 रन जो है वो बनाने के लिए चाहिए।
1: अब बिल्कुल पास मदारकदीम वकरा वी एफ एस ग्लोबल के साइड ओक बनाफी मेट्रो के जस्ट नेक्स्ट। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड ड्रॉप बाय टुडे।
2: ब्रॉट टू यू बाय इबाद स्पोर्ट्स, गियर अप, गेम ऑन, ऑल योर स्पोर्ट्स नीड्स एट वन प्लेस। इबाद स्पोर्ट्स, ब्रांड ऑफ अचीवमेंट्स। कॉन्टैक्ट 7733-9198।
1: बाउंड्रीज हिट, फ्लेवर्स इग्नाइट। अब हर डिश में लगेगा देसी स्वाद का तड़का विद देसी ढाबा। टेस्ट का रियल सिक्सा। देसी ढाबा, बिन महमूद, तवर मॉल एंड मॉल ऑफ कतर।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Shackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi, I'm Udit Narayan here.
5: और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव। आप सब लोगों को ईद मुबारक।
6: रेडियो ऑलिव ईद मजलिस।

0: जी मैगा जी सुनियो कि दादी की हाल चाल
1: रेडियो ईद मजलिस
0: सिमरन कौर याव के साथ ईद मजलिस का पहला दिन था आज और कल भी ईद मजलिस जो है वो होने वाला है और परसों भी ईद मजलिस होने वाला है। परसों तो मेरा शो नहीं होगा लेकिन कल तो जरूर होने वाला है, कल थर्सडे है और ऑलरेडी मेरे को वीकेंड वाली फील जो है वो आ रही है क्योंकि छुट्टियां जो है वो चल रही है। सो एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक और अपनी कल शाम को 5 बजे फिर से होती है मुलाकात ईद मजलिस के डे 2 में और आप भी ईद को अच्छे से एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो पानी टाइम पे पीते रहिएगा एंड हो सके तो ज्यादा फ्राइड और ज्यादा मीठा जो है वो अवॉइड करेगा, थोड़ा थोड़ा लिमिट में चीजें चलती हैं, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। सो खाने पीने रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर किलो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: Peninsula Qatar wishes you Eid Mubarak.
2: Radio Olive, Eid Majlis.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: हाय ऑल, दिस इज सिपी जोस फ्रॉम ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स सेंटर, विशिंग द होल ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क फैमिली ए हैप्पी एंड चीयरफुल ईद मुबारक। थैंक यू।
2: This is Amira Dastoor, Eid Mubarak on Radio Olive 106.3 FM, Jio Vinda.

0: न्यू इंडियन सुपरमार्केट एंड रिटेल मार्ट विशेस यू ईद मुबारक। मिलन का त्योहार, प्यार का पैगाम, आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक। ईद
1: मुबारक। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. This is Club Ollie. Club Ollie. Radio Ollie 106.3 FM.

0: Radio Radio Olive 106.3 FM.
1: This is Club Olive. Club Olive. Tower Mall wishes you Eid Mubarak.
2: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव पर. ईद मुबारक, जियो बिंदास.

0: Radio Radio Olive 106.3 FM.
1: This is Club Olive. Club
2: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है
3: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर होम.
6: एब्सोल्यूट बारबेक्यू विशेस यू ईद मुबारक.
7: Hi, this is A.R. Rahman.
8: A.R. Rahman.
7: Eid Mubarak to my brothers and sisters around the world.
8: Radio Olive. Jio Bindas.
7: Jio Bindas.

0: मैजिक ट्रैवल्स विशेस यू ईद मुबारक।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: हाय दिस इज अरीन खान. आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास.

0: मिलन का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक।
1: ईद मुबारक।
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
3: रेडियो ऑलिव 106.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अल सुल्तान मेडिकल सेंटर विशेस यू ईद मुबारक।
2: हाय, दिस इज कैलाश थे। रेडियो ऑलिव के सभी सुनने वालों को ईद मुबारक। हैप्पी ईद टू ऑल।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: ओला विशेस यू ईद मुबारक।

0: 3FM.
1: मिलन का त्योहार प्यार का पैगाम आप सभी को रेडियो ऑलिव की तरफ से ईद मुबारक
2: सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: 93.3 FM. Joya Lucas wishes you Eid Mubarak.
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो पॉलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Hey, this is Eliana De Cruz, and here's wishing all you listeners a very happy Eid Mubarak. Eid Mubarak.

0: You are listening to Radio Olive. The best DJ.
1: Tower Mall wishes you Eid Mubarak.
2: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
3: हेलो एवरीवन, दिस इज सना खान विशिंग यू ऑल ईद मुबारक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 जियो बिंदास.

0: HRA wishes you a very happy Eid.
1: इस ईद बनाए हर पल यादगार
0: विद रेडियो ऑल 106.3 FM.
1: Stay tuned.